0: अड़पड़ कड्डी लगे पड़पड़ पड़िए साथ पड़पड़ बेड़ी पाइए पड़पड़ कड्डिए खा पड़िए जिते बरस बरस पड़िए जिते मास पड़िए जिती अर जा पड़िए जिते सास नानक लिख है एक गल और हो मैं चपड़ा चाक महला फैला
1: लिख लिख पड़िया ते ता कड़े।

0: यार किच्या दोस्ती सब जग चलन हा ओ मिठा कुड़ मख कुड़ बे ओ नानक बखाने बेंती तदबाज कुड़ों कुड़ महला हला
1: सच ता पर जानी है जर दे सच्चा हुए कुड़ की माल तरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानी है जर सच तरी पे यार नाउ सुन मन रैसी है।

गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गो बटर न जाए तो टिटका ता जप माली धान लछा खाए अंतर पूजा पढ़े कते बां संजम त्रोका पाई।

हमारी सबको आज्ञा प्रभु से आशीष दे। ताय को अपना पहले का समय है जा रहा है तथा तथा कर रहा है मंदा समय के प

हरी और दूजी ना ही जाए सो करे जे तिसर जाए सो करे जे तिसर जाए शुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चक्र चेहन अर बर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख कौ कहन सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज की जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शहाण गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत तब सर्वनाम कथे कवन

0: हो सचड़ा नाम ले हां मरण ना मंदा लोका आखिया जे मर जाने ऐसा कोई सेव हो साहिब समरथ आपना पंथ सुहेला आगे हुए पंथ सुहेले जावो ता फल पावो हो आगे मिले वड़ाई पेटे स्यों जावो हो सच समावो हो ता पत लिखे पाई महली जाए पावो खसमे पावो हो रंग स्यों रलिया बने मरण ना मंदा लोका आखिए जे कोई मर जाने महली जाए पावो खसमे पाव हो रंग स्यों रलिया बने मरण ना मंदा लोका आखिए जे कोई मर जाने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख

नव पर्यारे फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार बेशुमार अथा अगणत अतुल

0: रखिया जे कोई मर जाने।
1: महली जाए पावो महल मिल जाएगा, संपूर्णता दूसरे पदे दी। खसमे पावो जे खसम नू चंगे लग जांगे, खसम दा घर ते तां ही मिलेगा जे खसम नू चंगे लगांगे। जे खसम नू ना चंगे लगीए ते फिर खसम दा घर कित्थों मिले, किवें मिल जाएगा? ओदा घर ते उदों ही मिलेगा जदों उहनू चंगे लगांगे। उहनू ना चंगे लगीए फिर उहदा घर नहीं है। हुण जिहड़ा इंसान आपां नू चंगा समझे उही आखेगा ना भी चल आ भाई घरे चलीए, ते जिहड़ा चंगा ना समझे उह कहिंदा भाई इह घर लिजाण वाला बंदा ही है नहीं। आम करके शायद सुभापां कह दिंदे ना भी भाई इह घर लिजाण वाला कोई नहीं, ते जिहड़ा चंगा होवे उहनू आपां आप कहिंदे भी चल भाई साडे नाल चल। सतगुरु कहिंदे जे ते करते नू पा जाएगा फिर ते उहदे घर विच थां मिल जानी, फिर ते उहदे दर ते थां मिल जानी। जे उहनू ना पाईए फिर ते खोटे सट्टी है, बार बार फिर ते वाप धक्के मार के सुट दिंदा भी चल भाई इत्थे थां है नहीं तेरे वास्ते। जिहड़ा असली है उहनू आपां संभाल के रखदे, नकली नू आप कढ के सुट दईदा भी चल भाई तू कम दा ही है नहीं साडे। जिहड़ा जी भावे उहनू आप लै जाईदा, जिहड़ा ना भावे उहनू हत्थ जोड़ दईदे भी नहीं भाई। इसे तरह जिहड़ा जीव करते नू पा जाए वह उहदे दर ते परवानिया जांदा, जिहड़ा उहनू ना भावे वह ठुड्डे ते ठोकरां खांदा। उहदे कोल सिवाए ठोकरां तो कुछ नहीं है। इस फिर मालक जी कह रहे कहिंदे महली जाए पावो, महलां विच थां मिल जाएगी, पर एक कंडीशन एक शर्त है, खसमे पावो। जे मालक नू चंगा लग जाए, जे उहनू चंगा लग गया फिर रंग सिउ रलियां माणे, मालक कहिंदे फिर उहदे नाल मिल के तू आनंद माणेगा। उहदा घर है उहदे घर विच तैनूं थां मिल जाणी, जे उहदे घर च तैनूं थां मिल गई उही तैनूं फिर खुशियां ते आनंद बख्शेगा। ते जे तू उहनूं ना चंगा लगा फिर ना उहदे घर च थां मिलनी ते ना प्रसन्नता, कोई खुशी कोई आनंद नहीं। आनंद उत्थे ही है जिथे करते नू पा जाइए। कहिंदे मरन ना मंदा लोकां आखी है, जे कोई मर जाणा मरना मंदा नहीं है। लोग भावें आख रहे ने पर कहिंदे ओह नहीं फिर आखदा जिन्नू मरना आ गया, मर के जिन्नू जिउणा आ गया। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरन ना होई। जिन्नू ए मरना आ गया ना उन्हों फिर सदीव ज्यौन की जाच आ जाती है। इस तरह जी अज गुरु नानक साहब पहले दो पदियां राही सानू मत दे रहे ने। सतगुरु कृपा करन किते शब्द दे सहारे आसरे नाल सानू ज्यौना आ जाए, आपे भाव नू मार के ज्यौना आ जाए, मालक दी बंदगी विच जुड़ के रहना आ जाए, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਲੋਕ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਹੈ। ਮਲਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜੋਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਿਸਰ

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दोतां गावोरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ।

मन मेरे दुख सब विसारणांगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी।

सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। हर जन हर गोबिंदनो समरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठ।

हेत सीस दते बंद बंद कटाए होपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तन आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ली कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल नभाई तना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होए।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें त्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास वी सहाय। अर्जुन अर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै साहब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दया वै तहाय। सब थाई वे सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई वे सहाय दसां पातशाहियां जी दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाई देख के अणडिट कीता तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां संगणियां ने धर्म हेत शीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तानू आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चिता वे चिता मन का सदका सर्व सुख होए जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन शनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मानी वा मत उची मादा राखा आप वाहिगुरु। हे काल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे माण सतगुरु ने ताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज। आप जी दे दूर शब्द कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दे पाठ जी की अरदास है जी। बाणी पढ़द्या सेवा संभाल करद्या अनेक प्रकार दियाँ भुला गलतियां हो जांदियां ने अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी अगां तो समत बख्शनी दा रियाई हुई संगत की हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावां दर मंजूर करनियाँ ये यात्रावां सफल करनियाँ जी। सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसादी देख सज के हाजिर है दर प्रवाह नूं वे प्रवाह नूं प्रसाद संगत विच वरते जो जीव शके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी। आप जी करो कृपा अमृतमई बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था सूझ बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला।

0: ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲਿਹੈ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨ ਦੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵੇਂ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਈਂਦਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। उड़े उड़ आवे सैकों सा तिस पाछे बचरे छरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन क्रिया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा। सब ते आवहीं तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातारा। हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घड़ घड़ अंतर सर्व नरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर न जाना। तू पैर बरम बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी। तेना टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी। तिन का पो सब गवासी जिन से बया जिन से बया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी। परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी। तप ताप ही जप ही बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरत जी। तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई। जो तो पावे सोई थीसी जो तू दहें सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया वो सब तुझी माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जन सब तेरा खे, विजोग मिल बिछुड़या संयोगी मेल, जिसनो तू जाने है सोई जन जाने, हर गुण सद ही गाख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सर्वरड़े भैरे निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकजों मोह पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबी अले, मान एक न चेत समूड़ मना, हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जेना तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन्या हर राय, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन्या हर राय, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाव पाई, हमरी करो हाथ देह रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो, आभाद महे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख समय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवेर इनको आय संग्रिये, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख मार तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सेवगुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पड़ पड़ की जन्ने, जाओ उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा, जवे आ करख कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जीते बधन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब हीते रहित नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद असंभ, ताका मोड़े उचारत पिता, जाको पेव नवावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामोड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चिन्हत न भव, आप अपनी बुद है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुपस रूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जे रज से तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी, कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमड भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आ जुगा स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण गाता, जे अस तुझे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरेओ, ताकि ताप तनक में हरे हो, वृद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहें उबारा, जिन नारे नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग कीत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आभाद ले हो बारी, सर्व ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे, तब ते को अंख तरह नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो, सिरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो हे बखन्यों दोहरा, सगल दो आहर कौ छड़ के गए हो तो हारो द्वार, बहिंग हे की लाज अस गोविंदास तुहार, सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तुहारो द्वार, वहीं गहे की लाज अस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा अनंत, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां वाया सह सेती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दो तंगावो हरी केरा, मान जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब में सारना अंगीकार ओह करे तेरा, कर सब सवारना सबना गलना समृत स्वामी, सो क्यों मनो वसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे, करता तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैनों भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन है वसया, जैनों इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों, जिस दिया एह वडियाइया, कहे नानक सुनहो संतो, शब्द धरो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पंशवत घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुदवास कीते, काल कंटक मारिया, तोर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर के लागे, कह नानक तैं सुख होआ, तित खर अनहद बाजी आनंद सुनहो बड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाए उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गोरते जानी सुनते पौनी कहते पवित सतगुर रहा पर रे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पौनी कहते पवित सतगुर रहा पर रे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थल विच तिन वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाय तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले जीवा तन मन थीवे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: तुम पहे अरदास

कोई न जाने तुमरा उचेत सगल सामग्री तुमरे सुतरता तुमते हो सो तुमरी गत में तो तुम ही नानक दास

आए सब थाई होए सहाए। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी।

जिन्हा नाम जपया वंड सकया देख चलाई ते गवाही देख के अंडठ कीता तेना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी किसान स्वासा नाल निवाही तेना दी कमाई दा

श्री अमृत सर जिया दे दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बुंगे जुग जुग अटाला धर्म का जयकार बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दा रखाप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने

पन्ना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब महाराज जी आप जिया दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहेब जी विखे संध्या वेले दे दीवान सजाए गए सजे हो दीवाना अंदर शब्द कीर्तन सोदर है लाल साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा का टपल चुक माफ करनी आप जी आंदे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनी यात्रा सफल कर।

राम। पवित्र कड़ा परसा जी देख सज के हाजिर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद। समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो, जो जी सके आप जियां दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमयी बाणी विच पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन जिउण दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख।

दोहरा आ गया पहिया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभ को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, खुआर हो सब मिलेंगे, खुआर हो सब मिलेंगे। बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी का खालसा।

तोजत उद्यन्ना बहुत जन्म परमत तैहारिया अस्थिर मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर पज नानक बात बताई बहुत जन्म परमत तैहारिया अस्थिर मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर पज नानक बात बताई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरु इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के सतगुरु महाराज जी दे पावन चरणां च जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा विच लग जान। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता सरबंस दानी बादशाह दरवेश शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी और गुरु का खालसा बाई धार दे राजे उन्हां दे सिपाही जिन्हां दे नाल गुरु महाराज गुरु के खालसे दी जंग हो रही है एक बार फिर बाई धार दे राजियां दे सिपाही जड़े ने मारे जा रहे ने और बहुत भारी नुकसान राजा भीम चंद कहलूरी राजे नूं होया है। भावें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लोहगढ़ दा किला छड़िया इन्हां दे मन दे विच ये भरम पैदा हो गया भी हुण सतगुरु जी कमजोर पै गए असीं इधरों हल्ला बोलांगे हमला करांगे ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं हरा देंगे।

0: और जो भी सूबा सरहंद वालों खबर होएगी वो लेके आना करे
1: कहे वजीर खा जाए चढ़ावे
0: ते जां फिर दूत जाके सूबा सरहंद नू अपनी सेना लेके इधर चढ़ाई करके तैयार करके लेके आवे भी तू हुण नाल ही साडे चल। इस तरह दूत नू समझा के भेजो भी वह सूबा सरहंद पहली गल कहिंदा की है जां फिर उन्हूं इस तरह गल आखे कि वह नाल ही चढ़ के आ जावे।
1: भीम चंद ते सुन कर कान
0: ये जड़ी गल कही सी ये राजा भीम चंद ने कही कहलूरी राजे ने भी जे बादशाह दा हुक्म हो चुका है फिर सूबा सरहंद नू आ जाना चाहिदा सी जे नहीं आया तो आपां इक दूत भेजदे आं उत्थों दी खबर लैके आवे जां नाल ही उन्हूं लैके आ जाए। जदों कहिंदे भीम चंद राजे ने यह गल कही ते सारियां ने सुनी है
1: भूप चंद तवकीन बखान
0: जेड़ा कहिंदे भूप चंद ये बाई धार दा राजा इन्हें फिर

दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी।

पंजवा करो मेहनते सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहा खाड़ चलो आर लाया कै बसन सहेला उदका डर सरण आ रे मन गुरमिलका सवारी रहाओ ए

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहे हो बे आपे व्यापत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पात अविनाशी अवगत आपे।

हर अंत नाहीं पारावार, कौन है करे विचार। जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाने। हाँ के बल बल बल बल सद बलहार, अमृत परवासर अतुल भंडार भर, परे ही ते परे अपर अपार पार। आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार, ओपत पर लो एक निमख तो कार। आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट पराछत जाहे नाम लिए हर हर। जन नानक भगत दार तुल।

बल बल सद बल हार, सगल भवन तारे एक थे किए बिस्तारे, पूर हो सर्व में आप है निरा

सच सबा दीवान सच सच्चे पै तरयो सच्चे तखत निवास सच तपावस करयो सच सिरजियो संसार आप अपुल न पुलो रतन नाम अपार कीम न पवै अमुलो जय कृपाल होयो गोविंद सर्व।

अनित्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधिक तेतीस कोर तिर की मना परिये ब्रह्मादिक सनकाद शेख गुण अंत ना पाए अगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जेह काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिलै दान संत रेन जेह लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै बल्यो चराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।

किंकनी शब्द चनतकार खेल पाए जियो, काल कलम हुक्म हाथ कहूं कौन मेर सके, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत हिये चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा।

सुतरचित भगत हित भेख तरियो हर नाकस हरियो नाख विदार जियो शंख चकर गदा।

देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच्छ हो बरा जमुना कैकूल खेल।

तुद डिठै सचै पातशाह, मल जनम जनम दी कटी सजन सच्चा पातशाह। सिर साहां दे साहो जिस पास बैठया सोही, सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

जोगी सुनतया वजय तिलक नाम करतार सुख मृत नाम निरंजन काया काया कर सत्य मन संतोख उपजय दिन के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जा रहा तय गुड़िया राखा रब विकारी को दाखा चले दो दिना बिकाई कर।

पापन विचार हम विच नरक स्वर्ग अवतार हम विच असै हम विच रवै हम विच परियै हम विच तुवै हम विच जाति जिन सिखु वै हम विच मरकौ सैन मुख मुख किसार न जाना।

हुकुम है पया कृत फराय। हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस पाए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक।